क्या बात है, सेल सेल सेल लग चुकी है। सो प्रोग्राम पे जा मेरा लाइए फिर दो बोल थोड़े करिए माहौल गर्मा गर्म। नहीं तू मेरी खंड मिश्री लग गया नहीं गाना वालों।

0: Dr. Smith Call at
1: 647-539-4499. बिजनेस नु करो प्रमोट आज ही अपनी एडवर्टाइजमेंट बुक करने लिए कॉल करो प्रभ संधु होरा 437-870-0001 437-870-0001.
2: देखो जी करता है अपना नंबर वन पर मेरा दिल करता है अपना कर सारे तो सोना हो
3: बस इनी गल हो कर।

0: सच कह जो हुंदा
1: चुल्ले ते पकती रोटी सच है
2: मिट्टी चुगदी फसल सच है
1: गुरु दी पानी सच है सतगुर प्यारे सच्चे दी बाह फड़दे हुंदे ने।

0: एक्सपर्ट।
1: हाँ हाँ एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड एंड अप्रोचेबल ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, लीड जनरेशन सिस्टम, पैसिव इनकम प्रोग्राम फॉर रियल्टर्स, फ्री एडमिन सपोर्ट, हायरिंग फुल टाइम एंड पार्ट टाइम रियल्टर्स। कॉल 416-823-9505 और विजिट summitrealtyexperts.com। समिट रियल्टी एक्सपर्ट।
2: भाई साहब जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं, इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है।
3: ता इस लई आज ही हरप्रीत सैनी नु मिलो। इना कोले स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तो आनु सिर्फ 10 साल या 20 साल लई पे करन दी लोड है, ते इन्ने नाल ही तुसी पूरी लाइफ

0: एक्सपर्ट।
1: हाँ हाँ एक्सपर्ट है, एक्सपीरियंस्ड एंड अप्रोचेबल ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, लीड जनरेशन सिस्टम, पैसिव इनकम प्रोग्राम फॉर रियल्टर्स, फ्री एडमिन सपोर्ट, हायरिंग फुल टाइम एंड पार्ट टाइम रियल्टर्स। कॉल 416-823-9505 और विजिट

0: सारा फर्नीचर ओ भी वाजिब रेट नाते सो आज ही पहुंचो कासा फर्नीचर 120 डेल्टा पार्क बुलेवर्ड ब्रैम्पटन इना दी एक और लोकेशन है सोफा मार्ट 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन ज्यादा जानकारी ले कॉल करो परंजीत होरानु 905-803-8056 905-803-8056
1: ओ यार बिजनेस का माड़ा हाल होया पे कितनियां तरकीबा लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही
2: निर्बल बाबे ने कहा से कृपा हो जाओगी नींबू मिर्चा टंगो पर कृपा तो हो ही नहीं
3: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ले पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया
4: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता
5: रेडियो आवाज
6: रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 to 10 बजे तक एवरी सैटरडे 10 to 1 बजे तक प्राइम टाइम ते वधेरे जानकारी ले तुसी कॉल कर सकते हो 416-518-3200

0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी
1: 647-765-2340-647-765-2340-647-765-2340.
2: You're listening to Guntas Radio on AM 530 from 10 to 11 a.m. Monday to Friday with Jazz Tagar, your favorite show.

0: One-stop solution for all your mortgage needs. Bank declined. Mortgage for self-employed. Quick closing in 48 hours. Or commercial loan. Just don't worry. 647-512-7000. Mortgage broker Mukesh Chauhan from Mortgage Diligent. FSRA number 10252. Conditions apply.
1: Don't worry. Mukesh Chauhan hai.
2: यारों के साथ जश्न या फैमिली के साथ करना हो जश्न, ढाबा ऑन द फॉल्स आए, टेस्ट का वादा और चॉइस भी ज्यादा।
3: दिल्ली वाला बटर चिकन, रोगन जोश, सोया चाम, बेस्ट वेज नॉन वेज बिरयानी इन द टाउन, बेस्ट वेज नॉन वेज एपेटाइजर या माउथ वाटरिंग मेन कोर्स खाना हो तो सीधा चले आए ढाबा ऑन फॉल्स, द बेस्ट फूड इन नायग्रा फॉल्स। LLBO एंड बियर ऑन टैप ऑल्सो अवेलेबल, वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द फॉल्स, फ्री पार्किंग। विजिट 5039 सेंटर स्ट्रीट नायग्रा फॉल्स, कॉल 9053580864
2: 9053580864 Dhaba on the Falls.

0: जी हाँ, चांदी के फैंसी सेट, चांदी की बैंगल्स और चांदी की पायल।
1: इतनी बस नहीं, जेंट्स ने चांदी के कड़े, चांदी की चेन, चांदी के ब्रेसलेट,
0: बर्तन और चांदी के किसी भी तरह का सामान लेने के लिए वन एंड ओनली सिल्वर हट
1: फोर एंड अवनीजर इंटरसेक्शन ते गुरुद्वारे बाय प्लाजा दे विच सिल्वर हट
0: 6473393521
1: 6473395 4525 अवनीजर रोड ब्रैम्पटन
0: सिल्वर हट
2: वे जिथे चलेंगा चलूंगी नाल तेरे वे टिकटा दो ले ले
3: लेनियां होन या चार बिजनेस ले जाना होवे या फिर कुमन ले इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट हर तरह दे ट्रैवलिंग पर्पस ले कांटेक्ट करो एयर टिकट्स इंश्योरेंस पासपोर्ट एंड वीजा सर्विस ओवी रीजनेबल प्राइसेस ते स्पेशल ट्रैवल पैकेजेस भी अवेलेबल ने कटारिया टूर एंड ट्रैवल 2883 डेरी रोड ईस्ट मिसिसागा कॉल 9056781200
4: आखरी अपील साड़ी रद्द हो गई।
5: ओ भरावा साड़ी भी अपील रद्द हो गई है।
6: मैं ता तुहानू पहले ही कहा सी मम्मी डैडी दा इमिग्रेशन दा केस स्मार्ट इंटरनेशनल इमिग्रेशन वालियां तो करवाओ
7: सुपर वीजा फॉर पेरेंट्स विजिटर वीजा
8: गल हवे रियल एस्टेट सेल परचेज ऑफ बिजनेसेस कमर्शियल ट्रांजैक्शन विल पावर ऑफ अटॉर्नी या फिर एफिडेविट दी ता सोचन दी लोड़ नहीं इको नाम याद रखो लॉ ऑफ अमन शर्मा जो अपने क्लाइंट्स नु देंदे ने एक्सीलेंट लीगल सर्विसेज अमन शर्मा LLB बैरिस्टर सॉलिसिटर एंड नोटरी पब्लिक 25 चेरी क्रेस्ट ड्राइव यूनिट 6 ब्रैम्पटन कॉल 905 913 2355 9059132355

0: हेलो एएम 5:30 तो तुसी सुन रहे हो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो
1: टुडे विच लाइव गलबात कर ले हुणे कॉल करो 905-564-6444

0: एस्थमा, एलर्जी, एसिडिटी होगी, कॉन्स्टिपेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, कोई तरह की पुरानी तो पुरानी आर्थराइटिस है, माइग्रेन है, स्किन के इशू है, सोराइसिस हैगी है, एग्जिमा और फुलवेरी, हर बीमारी का इलाज परमानेंट। बच्चों के ऑटिज्म का जरूर नाल लवांगा सिमराज जी, ऑटिज्म के मेरे पूरी दुनिया तो बच्चे है जो बहुत बच्चे ठीक हो चुके हैं, कई बच्चे ठीक हो रहे हैं। तो जो भी कोई बीमारी तो सफर कर रहे हैं, मेरा नंबर जरूर याद रखो, अपने दोस्त मित्रों दो, मैं जरूर थोड़ी हेल्प करूंगा। 6478180055 647-818-0055 कदे भी कॉल करके आ सकते हैं। देखो कोई भी काम सीखते कि पूरी जिंदगी गुजर जाती है बंदे की, जे तो मैं लकी है पूरे ब्रैम्पटन लोगों की सेवा कर रहे हैं। ठीक है, तो लो अपना ध्यान रखो, कोई जरूरत हो, कोई गल पुछनी हो, जानकारी लेना हो, जरूर मेरे को आके पूछ सकते हैं। कोई जानकारी से आप कोई चार्ज नहीं करते हैं। ठीक है, हुण आपां एंजाइटी डिप्रेशन दे बारे गल करदे हां। देखो 7-8 घंटे दी सानू नींद चाहीदी हुंदी है, 14 मिंट दे अंदर सानू नींद आ जानी चाहीदी है, 14 मिनट। जे नींद नहीं आउंदी इट मीन्स तुहानू प्रॉब्लम हैगी है, करवटे बदलदे रहने, इधर उधर करदे रहने हो, इट मीन्स कोई ना कोई प्रॉब्लम हैगी है तुहानू। देखो इधर देखो, एंजाइटी कई तरह दी हुंदी है, पैनिक डिसऑर्डर, स्वेटिंग हो गई, चेस्ट पेन हो गया, सोशल एंगजाइटी, चार बंदियां दे विच बैठे हो उहदे करके घबराहट हो जाती है, फोबिया, हाइट से जाने हो, फ्लाइंग कर रहे हो, वह लोगों को हो जाती है, जनरल एंगजाइटी, छोटी छोटी छोटी गल तो चिड़ जाता है बंदा, जो है वह भी एक एंगजाइटी है। जे तुसी ट्रीटमेंट नहीं करते तो फिर तुहानू डिप्रैशन होएगा, होर बहुत इशू, होर भी बहुत इशू होंगे ने एंगजाइटी करके, नर्वस सिस्टम थोड़े पूरी बॉडी नो डिस्टर्ब करना है, सैड होंगे, तुसी गुस्सा आएगा, कदे काम नो मन नहीं करेगा, कंसंट्रेशन दी प्रॉब्लम होएगी, नींद दी प्रॉब्लम होएगी, थकावट होएगी, और भुख नहीं लगती, लोगों के सुसाइडल थॉट आते हैं, कई लोग सुसाइड भी कर लेंगे सिमराज जी, उरे दुनिया तो चले जाते हैं छोटी छोटी गल तो लेके। जो है तो 6478180055-647-818-0055 कदे भी कॉल करके आ सकते हैं। एक बीमारी मैं दसदा सिमराज जी, तुम कदम शायद सुनया नहीं, नार्कोलेप्सी, और ना अमेरिका के बहुत लोग सफर कर रहे हैं, 1 लाख तो बंदा, ये हों कि बंदा तुरते फिरते सौ जाता है, पौड़िया से चढ़ रहा उसे सौ जाता है, गड्डी चला रहे उसे सौ जाता है, तो यह एक बीमारी है लोगों नूं, जो है इस करके छोटी छोटी बीमारी बहुत वड्डी बीमारी बन जाती है। तो 6478180055-647-818-0055 कभी भी कॉल करके आ सकते हो। एवरीडे मेरी क्लीनिक 11 to 7 बजे तक होंगी है। तो 6478180055-647-818-0055 कभी भी कॉल करके आ सकते हो। थैंक यू सिमराज जी, थैंक यू वेरी मच।
1: ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇਡੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਇਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ 47 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 47 ਈਅਰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਰੂਵਡ ਹੀ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਤੋਂ, ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਡਾਇਗਨੋਸਡ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। ਨੰਬਰ ਘੁਮਾਓ 6478180055-647-818-0055 ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੇ ਡੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕੁਈਨ 'ਤੇ 20 ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਅੰਟੇਰੀਓ ਬੁਲਵਰਡ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖਬਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਲਬਰਟਾ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ required 178,000 signatures and ID verification tota bahut zyada vadh 302,000 alberta de lokan to signatures te IDs ikatthe de verify kite ne, inni zyada demand hai add hon de layi canada to। ajj ek alberta judge ne inna de separatist petition nu hi cancel kar ditta, kiya ke eh da hun koi matlab nahi hega, kyon kyunki ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੈਵਰ ਕੰਸਲਟਡ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਪੀਪਲ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਕੱਢਣ 'ਚ

0: normally good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी कस्टडी किस नूं मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहणगे
4: S&S Lawyers को इन सारे सवालों के जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है अपने हक जानने ले या सलाह लेने ले आज ही S&S Lawyers नूं कॉल करो 416-655-2000

0: आप भी अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ जरूर आएं। वेज थाली, चना भटूरा, अमृतसरी कुलचे का स्वाद बाय वन गेट वन ऑफर के साथ जरूर उठाएं। फ्रॉम 10 AM टू 8 PM सिंपली इंडियन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट सर्विंग यू फ्रॉम 3 लोकेशन 15 फेंडर वे 85 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट 275 गार्डन ब्रूक ट्रेल इन ब्रैम्पटन।
1: क्या बात है, सिंपली इंडिया से जरूर तुसी गेड़ा मार के आओ। बहुत वधिया क्वालिटी फूड ते नाल डील दी डील तो सुन रही, बाय वन गेट वन फ्री, क्या बात है, सिंपल इंडियन स्वीट। सो गलबात थोड़ी साड़ी हो रही है, अगेन मैं नंबर दे दवा स्टूडियो का, जरूर जी सद के कॉल करो ते तुसी अपना अपना ओपिनियन साडे नाल शेयर कर रहे हो। नंबर है अपना 9056733337905673333, फोन नंबर है 9056733337। एक थोनों अक्सर ही इनफॉरमेशन देने होने हैं 5 Rivers Duck Cleaning दी, क्योंकि हुण नैक्सट वीक मौसम बड़ा गर्मा गर्म है, सो हो जाओ रेडी ते तुसी डक क्लीनिंग करा लो एसी चलाउण तो पहला पहला। इन्हां कोल वीकेंड ते कुछ स्लॉट्स अवेलेबल ने, मुंडे यंग ने, मेहनती ने, बहुत